बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: This is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: I am your only Adam.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्या कहा?

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फाइनली फाइनली फाइनली आए तो, मतलब जिंदगी में मुझे लगता है जितना हम सांसों का इंतजार करते हैं उतना ही इस दिन का इंतजार करते हैं। मैं बात वीकेंड्स की कर रही हूँ भाई, हमारे वीकेंड्स जो हमें सुकून देते हैं, खुशियां देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना वाला वक्त देते हैं। तो लीजिए जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और एक बार फिर से आपकी जिंदगी में आ गए हैं यही प्यार भरे वीकेंड्स। जी हाँ, बहुत सुकून है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है इन वीकेंड्स में, हमारे सैटरडे और संडे के दिनों में, क्योंकि इनके साथ ही जो एनर्जी हम खोते जा रहे थे ना, मतलब पूरे हफ्ते काम करने के बाद जो थकान थी उसे हम वापस गेन करेंगे और आने वाले वीक को खूबसूरत बनाएंगे। सो यस, आपके इस वीकेंड को हम भी खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए रेडी हैं एक बार फिर से रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और इस वीकेंड आपके साथ एक बार फिर से सताक्षी है दोस्तों। तो चलिए इन वीकेंड्स को खास बनाने की कोशिश रेडियो प्रस्वानी पर करते हैं और शुरुआत करते हैं इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, सैटरडे डिलाइट आपके साथ है सताक्षी और आप सुन रहे हैं मुझे अपने वीकेंड्स।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। यू तो हर दिन बहुत ही हसीन और खास होता है, लेकिन जब बात हो छुट्टी की तो मतलब किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता है कि बॉस क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पहनना है, क्या दिखना है, कैसे लगना है, कैसे लुक्स होने चाहिए। ना, हमें जैसे पसंद है हम वैसे पहनते हैं, हम जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं हम वो कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लगना चाहते हैं हम लगते हैं, हमें उठने का मन है तो हम उठेंगे, नहीं मन है तो रहने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो बॉस अपना दिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वीकेंड्स की होती है वो ये कि अपने बॉस हम खुद होते हैं, है ना, हमें किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है। तो बस इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है जब सैटरडे आता है और वो बताता है कि भैया अब ना तो ऑफिस के बारे में सोचना है और ना ही बाहर से झांक के ऑफिस वालों को देखना है, अगर कोई दिख भी जाए तो उसे पहचानना नहीं है। तो अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास, आपके अपार्टमेंट में कोई आपके ऑफिस का रहता है बंदा, तो उसे बिल्कुल मत पहचानिए और बस आज अपने में खोए रहिए और अपने राजा बने रहिए। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को भी सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे लाइट।

खुश रहा करो, खुश रहा करो, यही जिंदगी के सबसे बड़े दुख की वजह है भाई। हमेशा मुस्कुराते रहना जरूरी नहीं है, अगर रोना आ जाए तो कभी रो भी लिया करिए, अगर सोने का दिल करे तो थोड़ा सो भी लिया करिए, कभी इतना हंसिए कि हंसते हंसते पेट दुख जाए, और कभी इतना खेलिए कि खेलते खेलते थकान हो जाए, कभी आधी रात को कुछ खा लीजिए तो कभी गुमसुम से जाकर खिड़की पर बैठ जाइए, कभी दिल की बातें किसी से करके खुद हल्के हो जाइए। भाई देखिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होगा, सब कुछ सच्चा सच्चा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिंदगी में नमक, मिर्च, मसाला, दोस्त, एनिमीज, सबका स्वाद तो चखना पड़ेगा ना। इसलिए कहती हूँ, हमेशा जिंदगी में सुख की उम्मीद मत रखिए, सुख से परे भी एक जिंदगी है, उसे जी लीजिए। कहने का मतलब है जिंदगी को जी लीजिए, सिर्फ सुख की चाह मत करिए। और अगला ट्रैक सुनिए, सदाक्षी के साथ, सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट, आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रीटू प्रस्थानी 1701 एम पर। आपके वीकेंड्स को आपके लिए और भी खास और स्पेशल बना रही है बाबू मशाय, आपकी अपनी सताक्षी। तो इस सताक्षी के साथ एक और गाना सुनने के लिए रेडी है, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रीटू प्रस्थानी पर सैटरडे डिलाइट।

वेल। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि 40s और 60s वालों के लिए वो बात बहुत खास है जो मैं करने जा रही हूँ। 40s से लेकर 60s तक का जो एरा होता है, उम्र का एरा, उस दौरान ना हम सबको लगने लगता है कि यार बस अब बहुत हो गया, अब तो हमें अपने लिए जीना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो इस उम्र में हैं भाई, इस उम्र के बीच में हैं, तो भाई लगता होगा आपको भी ऐसा ना कि आप खुद के लिए बहुत जी लिया। आप हम कैसे दिखते हैं इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं। कौन हमें पसंद करता है इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम किसे पसंद करते हैं। हम कितने अट्रैक्टिव हैं इससे ज्यादा हम कितने हेल्दी हैं ये मायने रखता है। हम कितने खुश हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो बाबू मोशाय, कम से कम अब तो जी लीजिए अपनी जिंदगी, और चलिए अपने फिटनेस का ख्याल रखिए, और अपने वीकेंड्स को सताक्षी के साथ सुनते रहिए। सैटरडे डिलाइट, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

जी हाँ, सैटरडे पर सताक्षी का साथ इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी पर, और आपके साथ इस साथ को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आगे लेकर चल रहे हैं। इस वीकेंड हो रही है आपके साथ कुछ बहुत ही गहरी और प्यार भरी बातें, तो बस आपके साथ मेरी बातों का सफर सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

भाई बात करती हूँ अभी उनसे जो हाइट छोटी है इसलिए लोगों से लड़ नहीं पाते हैं। हाँ, लोग उन्हें कुछ भी सुना के चले जाते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं, और वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए भाई, आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई हमें एक थप्पड़ मारे और हम दूसरा गाल आगे कर दें। तो आज के जमाने में जिनकी हाइट कम है उनके लिए एक सजेशन दूं, बहुत बढ़िया सजेशन है। देखिए, चिंता मत करिए, हाइट छोटी है तो कोई बात नहीं, आपकी जबान तो लंबी है ना, बस वही फेंक फेंक के मारिए सामने वाले को, देखिए फिर उसकी बोलती कैसे बंद होती है। अर्धाक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: सैटरडे के कुछ खूबसूरत लम्हों को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्फानी पर. जी हाँ, ये वीकेंड्स हमारे बहुत ही स्पेशल हो गए हैं क्योंकि इन वीकेंड्स हमारा आपके साथ साथ जो और खास हो गया है. तो इस साथ से खास को एक अच्छे से गाने के साथ रिकवर किया जाए. आइए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्फानी 1701 AM.

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर, और ये वो सफर है जो आपके वीकेंड्स को आपके लिए और भी स्पेशल बना देता है। वैसे लोग हमेशा ये कहते हैं कि सपने अपनी औकात के अंदर देखो, पूरा कैसे करोगे। मैं तो ये कहती हूँ कि वीकेंड पे प्रॉपर रेस्ट ले लीजिए, लेकिन सपने हमेशा अपनी औकात के बाहर देखिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, ये आप कहाँ जानते हैं, ये तो ऊपर वाला जानता है ना। वो आपसे कितनी मेहनत करा सकता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, ये वो जानता है। तो बस सपने हमेशा वो देखिए। और वैसे भी मैं कहती हूँ यार कि अगर अपने औकात के अंदर सपने देखे तो सपने क्या देखे, उन्हें तो आप पूरा ही कर लेंगे। बात तो तब है, सपने तो तब हैं जब आप अपनी औकात के ऊपर जाकर देखें, जिन्हें पूरा करने से पहले लगे कि यार इसके लिए यहां तक पहुंचना है। तो रेस्ट कीजिए, क्योंकि वीकेंड्स के बाद फिर से सपनों की उड़ान भरनी है। लेकिन अभी सपनों की भी बात नहीं करेंगे, एक बढ़िया सा गाना सुनवाएंगे, क्योंकि ये टाइम तो चिल टाइम है, और इसमें थोड़ा सा चिल करते हैं। आइए अगले ट्रैक के साथ। Keep listening to Radio Prasthani, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सटरडे की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बातें इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो पुला मस्ती पर। मेरे साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट, और सैटरडे पर ये जो साथ है ना मेरा आपके साथ, ये आगे भी बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। Keep listening to Radio Prasthani 1701 AM।

सो वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट. आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर. एक वक्त एक टाइम ऐसा होता है जिंदगी में जब हम लोगों को बहुत सफाई देते हैं, क्योंकि शायद हम रिश्ते खोने से डरते हैं. लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम सफाई देना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि बस सफाई देने से कुछ होने वाला नहीं है. और सफाई दे दे के तो हम सफाई कर्मी बन जाएंगे ना, मतलब फिर तो डस्टिंग की या किसी भी तरह की सफाई के लिए हमारी जरूरत पड़ने लगेगी लोगों को. तो भाई इतना सफाई मत दीजिए कि लोग आपको काम के लिए अपॉइंट करना शुरू कर दें. हाँ, सफाई उतनी ही दीजिए जितनी जरूरी है, और वो भी उसे जिसे देना जरूरी है. भाई मेल्स हस्बैंड्स घरवाली को सफाई दीजिए, समझ में आता है. मॉम डैड को सफाई दीजिए, समझ में आता है. भाई वाइफी अपने हस्बैंड को सफाई दीजिए, समझ में आता है. लेकिन किसी के ऐसे बंदे को सफाई देना जिसके साथ हमें लगता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, वो गलत है ना जी. तो ख्याल रखिए, सफाई वाले मत बन कर रह जाइए सफाई दे देके. खुद की इज्जत का, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए. और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी. आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: जी हाँ, सैटरडे पर आज कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें चल पड़ी हैं, बड़े मस्ती चल पड़ी है क्योंकि गाने यार मस्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बातें तो मैं भी कर लेती हूँ जो आपको हंसा देती होंगी, मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती होगी, जिनके साथ ऐसा लगता होगा कि यार थोड़ा और लंबा जोक हो सकता था, होता है ना। हाँ, तो बस ये बातें जो है ये करूंगी आगे, लेकिन अभी एक अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए बॉस, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट। और अभी कुछ लोगों की आवाज आई, बॉस का नाम मत लेना आज सताक्षी, बिल्कुल नहीं लेंगे भाई। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को एंड कीप लिसनिंग टू आपका अपना सैटरडे डिलाइट।

भाई देखिए, प्रेशर कुकर में जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है, सीटी बजती है ना। और अगर प्रेशर कुकर के बाहर प्रेशर ना निकले, वो सीटी ना बजे तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेशर फट जाएगा। हाँ, मैं ऐसी स्टूपिड बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। आपके प्रेशर का क्या भाई, प्रेशर तो आप भी बहुत सारा ले रहे हैं ना। ना ना, वो वाला प्रेशर नहीं, सुबह वाला भाई, वो ऑफिस का प्रेशर, वो घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर। और ये प्रेशर निकलेगा कैसे, अगर ये फट गया तो आपका दिमाग जो है उस प्रेशर को ले लेकर परेशान हो रहा है। इसलिए वीकेंड्स आते हैं आपकी जिंदगी में, ताकि आप थोड़ा चिल करें। और हम जनरली करते क्या है, हम वीकेंड्स पर भी वो घर की बातें, वो रिश्तेदारों की बातें, वो किसकी शादी में कितना शगुन देना है उसकी बातें, वो कब जो है किस पार्टी में जाना है, कब कौन घर आने वाला है, कौन सा मेहमान कितने दिन से घर नहीं आया डिनर पे, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी बातें उसी दिन डिस्कस करते हैं। भाई इनको रोज के दिनों के लिए रखिए, और वीकेंड पर सिर्फ और सिर्फ आप, आपका पार्टनर और बहुत आपकी फैमिली आपके साथ हो, एक बढ़िया सी पिकनिक ट्रिप हो, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, आप अपने उस टाइम को एंजॉय करें, प्रेजेंट टाइम में उस वक्त आप जिए, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, सोचिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

सैटरडे डिलाइट आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। देखिए जनाब, यूं तो पूरा वीक हम काम करते हैं, लेकिन सैटरडे खासकर हमारे पार्टनर के लिए बहुत ही खास होता है। क्यों? क्योंकि वो भी पूरा हफ्ता वेट करते हैं कि यार कुछ टाइम इस बंदे की जिंदगी से मुझे मिलेगा, क्योंकि आज की लाइफ जो है वो हमारी डेली लाइफ वो सिर्फ 9 to 5 के तो रह नहीं गई है। घर पे आके भी आपको काम करना है, लैपटॉप्स लेके बैठ जाने हैं ना। मुझे लगता है कुछ चीजें आने से पहले क्या होता था, ऑफिस टाइम खत्म मतलब काम खत्म। अब लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आपको दिन रात काम करना पड़ता है। मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं घर से भी, वर्क फ्रॉम होम पे नहीं है लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। कई बार बहुत सारे असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। देखिए पार्टनर जब आपका होता है तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है कि यार मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है इस बंदे के पास। तो वीकेंड्स आप जरूर उनके साथ स्पेंड कीजिए, उन्हें जरूर बताइए कि आपको कितनी मोहब्बत है। और याद रखिए कि हमेशा प्यार का इकरार करने से प्यार बेहतर होता है, मजबूत होता है और उसमें और फ्रेशनेस आती है। तो वो फ्रेग्रेंस वाली फ्रेशनेस को फील कीजिए और उसमें खुशबू भरते रहिए, अपने प्यार की महक डालते रहिए और अपने वीकेंड्स के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी खूबसूरत बनाते रहिए। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय कीजिए। से And stay tuned, Radio Brisbane.

तो दोस्तों ये था इस वीकेंड हमारा और आपका साथ कुछ बेहतरीन बातों और हमारे और आपके ख्वाबों से सजा हुआ। एक और साथ पर कुछ खास बातों के साथ अगले वीकेंड आपसे जरूर मिलूंगी। सुकून भरे कुछ पल होंगे, हमारा आपका साथ होगा, नए नए एहसास होंगे और ताजगी खूबसूरती हम सब कुछ फील करेंगे। लेकिन आज के सफर से अब ये वक्त है इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए अपने वीकेंड्स को जरूर खास बनाते रहिए, उन्हें जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। मेरी आपसे मुलाकात होती है अगले सैटरडे और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड्स।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर्स सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

ओम नमः शिवाय। भक्ति की पावन सरिता में स्नान करने वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। मैं हूँ आपकी भक्ति के सफर की साथी सताक्षी और आध्यात्मिक सफर भक्ति सागर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप इस भक्तिमय सफर को मेरे साथ सुन रहे हैं। भक्तजनों, सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, जीवन जीने की एक परम सत्य कला है। जब हम सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे धरातल पर भटकने वाले मन को एक सच्चा आश्रय मिल जाता है। आइए आज के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर भक्ति सागर सताक्षी के साथ।

केवल एक ग्रंथ नहीं, मानव जीवन के प्रत्येक रिश्ते और कर्तव्य का दर्पण है। आज आपसे बात करूंगी श्री राम के उस अद्भुत प्रसंग की, जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए केवट से नौका मांगते हैं। केवट प्रभु के चरण धोने का आग्रह करता है, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि प्रभु के चरण कमल की धूल में वो शक्ति है जो पत्थर को भी अहिल्या बना सकती है। तभी तो श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पद कमल धूरी धरनी मनी रहो चरण रेणु समान। केवट ने कोई धन दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रभु के प्रेम और चरण सेवा मांगी। यही तो निष्काम भक्ति है, जहां मांगने के लिए कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रभु को पाने का भाव होता है।

रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ हैं आप और सुन रहे हैं मेरे साथ भक्ति का अनमोल सफर भक्ति सागर। हमारा और आपका भक्ति का ये साथ आगे भी जारी रहेगा। हम और आप भक्ति मार्ग पर आगे भी बढ़ेंगे। अभी आपको ईश्वर वंदना के साथ आगे लेकर चल रही हूँ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर भक्ति सागर।

भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में जप ज्ञान जाप यज्ञ मैं हूँ। कलयुग में प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता है उनके नाम का स्मरण। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को आग लगा सकती है, वैसे ही राम या हरि नाम का एक उच्चारण हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। श्रोताओं, जब भी मन अशांत हो बस आंखें बंद कीजिए और प्रभु नाम का जाप करने लगिए।

रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर। अपने मन को पावन और पवित्र कर रहे हैं आज हम भक्ति में डूबकर। आइए आगे चलते हैं इस अगले भक्ति गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी

वाणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं भक्ति सागर। हर रोज एक काम करना बहुत जरूरी है अगर आप ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं, ओमकार का जाप। जी हाँ, संसार के सभी जीवों का ख्याल रखना, सभी के दुखों को दूर करना और सबके धरातल पर सुकून का वास हो, इस बात की प्रार्थना करना आपके ईश्वर के करीब जाने का पहला नियम है। इस भाव के साथ प्रार्थना करिए कि सिर्फ आपके जीवन में सुख ना हो, सबके जीवन में वो सुख और शांति व्याप्त हो। न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको जीने का अधिकार मिले, यही तो सनातन धर्म है। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, सताक्षी के साथ हैं आप।

भक्तजनों अब भक्त हो गया है आज के सफर को वाइंड अप करने का। आशा करती हूँ कि आज इस आध्यात्मिक चिंतन से आपका मन शांत हुआ होगा। अपने धर्म का पालन करिए, सभी से प्रेम करिए और सनातन संस्कारों को आगे बढ़ाइए। मिलती हूँ भक्ति सागर में एक बार फिर से आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे।

0: हैं रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार की सुबह 6 से 7 बजे तक। आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत और 7 से 8 बजे तक हमारा इस्लामिक प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं 7 से हम कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, नात और हम। उसके बाद हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। और हम आपको याद दिला दें हर जुमे के दिन हर फ्राइडे को 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुन सकते हैं आज जुमा है नामक प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए पेश करते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड के मौलाना बशीर अहमद।

प्रोग्राम सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। और हम आपको याद दिला दें हर जुमे के दिन हर फ्राइडेज को 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुन सकते हैं आज जुमा है नामक प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए पेश करते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड के मौलाना बशीर अहमद।

0: लबनान ने ये कहा है कि जो जंग बंदी का लबनान पे जो भी अगर इसराइल हमला करेगा तो जंग बंदी हम नहीं करेंगे, ये हम जो भी जंग बंदी है ये खत्म कर देंगे।
1: आप ऐसे करें आप, हेलो
0: जी जी जी
1: जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी।
0: तो मैंने कहा जो ईरान ने मौका अपनाया वो मेरे लिहाज से तो बेस्ट है, क्योंकि वो कहता है जंग बंदी करनी है तो पूरे इस खित्ते में जंग बंदी होनी चाहिए, लबनान में और हर जगह पे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम भी ये जंग बंदी का जो मंसूबा आप कर रहे हैं इसको हम भी खत्म कर देंगे।
1: जी जी सही।
0: तो आगे देखो इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, हम तो ईरान के साथ हैं, वो हक पे खड़ा है, क्योंकि उसको नाहक मारा गया है।
1: जी अक्सर लोग ये बल्कि यूएन के तौर पर यानी बहुत सारे ममालिक भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, एग्रेशन हुआ है।
0: नहीं मौलाना साहब, यूएन सिर्फ मुसलमानों के हक में क्यों नहीं बोलता, हमें तो ये इस बात का तो अफसोस है ना। ये देखो अगर अमेरिका जो करे वो ठीक है, अगर कोई और मुल्क करे तो अमेरिका कहता है खिलाफ वर्जी, कोई इंटरनेशनल रूल भी होते हैं ना, उन अमेरिका ने इंटरनेशनल रूल फॉलो नहीं किए तो कौम को अमेरिका पर पाबंदियां लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगाते, सारी पाबंदियां गरीब कंट्रियों के लिए है।
1: आपने सही बात कही जी बिल्कुल, कि जब कानून हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं
0: मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगा, माजरा चाहता हूँ, अगर अमेरिका का शहरी किसी मुल्क में अगर गैर कानूनी पकड़ ले तो उस हुकूमत को पूरी हुकूमत को अमेरिका डिस्टर्ब कर देता है। तो अमेरिका खुद वेंजवेला के सदर को उठा के ले आया, उसके लिए कौम-ए-मुत्तहिदा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो ये कहा का कानून है, इंटरनेशनल रूल तो रूल है ना, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, लेकिन गरीब कंट्री के लिए और है, अमीर के लिए और है, तो सब कुछ फिर तो कौम-ए-मुत्तहिदा को अमेरिका रूल कर रहा है ना। ये तो गलत बात है ना।
1: आपने सही कहा कि एक दूसरे मुल्क के अंदर जाकर उसके जो हेड ऑफ स्टेट को उठा लेना ये भी तो ठीक नहीं है, और वहाँ अकवामे मुत्तहिदा और बाकी जो ममालिक हैं उसने इसके ऊपर शोर क्यों नहीं उठाया, ये क्या वजह है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखो रूल तो रूल है, अगर इंटरनेशनल रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये तो नहीं एक मुल्क के लिए और है दूसरे के लिए। अगर किसी अमेरिका के एक नॉर्मल बंदे को भी कोई कंट्री उठा के ले आए उस पर पाबंदियां लग जाती हैं, तो आपने हेड ऑफ स्टेट को उठा लिया तो कोई कोई पूछने वाला नहीं।
1: बहुत खूब कहा जी। तो आपका नाम आप जरूर बतलाएंगे?
0: अली अराइन, मेरा नाम लिखा होगा।
1: जी जी अली अराइन साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत सेंसेबल बातें कही, और वो बातें जो समझदार आदमी आम तौर पर अपनी सर्कल्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बात कर रहे हैं कि ये क्या वजह कि अगर कोई ताकतवर गलत काम करे तो कोई बात नहीं और गरीब करे तो उसकी पकड़ होती है, ये किधर का कानून है?
0: हाँ बिल्कुल, चलो आप, मैं ये कहूँगा आज की नशिस्त है ना आपकी, जो प्लीज इस पे थोड़ी सी ईरान के जंग के मतलब थोड़े से रोशनी डाले, चलो सुनने वालों को, आप अगर एक भी बंदा बोल पड़े तो हो सकता क्यामत वाले दिन हमें उसका अजर मिल जाए, हम तो हक की बात करना चाहते हैं ना।
1: ठीक है ठीक है जी, अरे साहब अली अरे साहब
0: आपको खुश रखे, जजाए खैर, थे मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं दूंगा ना, ठीक है?
1: मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम,
0: आपको खुश रखे,
1: जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे हमारे अली अराइन साहब जी, ब्रेडफोर्ड के हैं, और उन्होंने दो तीन बहुत अच्छी बातें कही, और उनमें यानी खुलासा उनकी बात का ये था कि मुल्क पर जब जुल्म हो रहा है किसी मुल्क पर भी, और अभी तो फिलहाल चलो ईरान के ऊपर और ईरान के जो अवाम है कितने हजारों की तादाद के अंदर उनको मार दिया गया है, हर एक आदमी अपने न्यूज के अंदर देख रहा है, और फिलहाल थोड़ी देर के लिए जंगबंदी हुई थी, फिर पता नहीं ये कितनी देर तक रहती है कितनी देर तक नहीं रहती, और इससे पहले जो था 2 साल गजा के अंदर फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता रहा, तकरीबन 80,000 90,000 मुख्तलिफ नंबर्स देते हैं, दिस डिफरेंट नंबर्स, 80,000 इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड और 90,000 मे बी मोर, सम पीपल गिव इट इवन मोर। तो वहां भी ऑल्दो द जनरल

0: general public was saying that this is zulm, lekin kya wajah thi ke jo zulm kar rahe the unko koi rokne wala nahi tha? Why is it that there was nobody stopping that zulm happening over there? And previous that you've seen in many other wars, dusre jangon ke andar bhi aapne dekha hai ke itna bada zulm ho raha ho lekin us zulm ko rokne ke liye ya us zalim ko saza dene ke liye koi taiyar nahi hota, koi kamzor mulk ho to inki baat theek hai ke us mazboot mulk wale ko agar कहा जाए कि आपके फला आदमी को या फला शहरी को हम पकड़ रहे हैं तो पूरे के पूरे सैंक्शंस उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कितने ऐसे ममालिक हैं कि उनके हेड ऑफ स्टेट को या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो इंचार्ज हैं उनको कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उनको पकड़ा गया, खुद ईरान के जो लीडरशिप है उनको यानी मार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं, कोई बोलता ही नहीं। ये क्या वजह है, आखिर वजह क्या है? और स्पेशली अगर आप देखें तो मुसलमान मुल्क जो हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल खामोश। हाँ, फिलहाल ऑफ कोर्स पाकिस्तान दरमियान में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इतनी देर के बाद, और बाकी जो दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्क हैं, और इससे पहले गजा के अंदर 2 साल जुल्म होता रहा और यही पाकिस्तान था, वहां कोई दरमियान में नहीं आया। वजह क्या है? हो सकता है आया हो, मुझे पता ना हो, आप हमें बता सकते हैं। दुनिया के इतने ममालिक वैसे लफ्जी तौर पर वी कंडेम इट, हम इसको कंडेम करते हैं, बस इतना कहकर ये समझते हैं कि हमने अपने फरीज अदा कर दिया, वरना दूसरे ममालिक की तरफ देखिए, उनके एक शहरी को अगर पकड़ा जाए तो मीडिया के जरिए और सिफारतखानों के जरिए और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, विद दोज डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड विद ऑल द प्रेशर फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड फ्रॉम सैंक्शंस, इवन इफ इट्स वन पर्सन, दे एक्सट्रैक्ट द पर्सन आउट एंड दे टेक हिम बैक टू देयर कंट्री। तो ये क्या वजह है आखिर में? ऐसा करते हैं, एक दूसरी कॉल आई है, इनको इनकी कॉल ले लेते हैं, फिर आगे बात चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: जी आप ऑन एयर हैं। जी
1: मोहम्मद जहांगीर मेरा नाम है।
0: जी
1: तो मैंने फोन किया, मेरे जज्बात उछल रहे थे, जो मैंने समझा फोन करना है, अपनी राय या अपना जो को ख्याल है वो पेश करूं। ख्याल वो जंग के बारे में है जनाब, जो जंग हुई ना ये बिल्कुल सच बात है, ये ईरान के साथ ज़ियास्ती हुई। पर क्यों ज़ियास्ती हुई, क्यों इतनी बड़ी ज़ियास्ती हो गई? एक सॉवरेन मुल्क है, एक बादशाही है किसी की, वो अपना मुल्क चला रहा है, अच्छा चला रहा है, बुरा चला रहा है, वो चला रहा है, वो जाने उसकी आवाम जाने, पर क्यों उन्होंने अटैक ऐसे किया? किसी का डर खौफ नहीं था। इसकी वजह ये हमारे जो ईमान है ना, मैं खुद इसमें शामिल हूँ कारी साहब, आप घबराना नहीं इस बात
0: पर। जी जी बात करें,
1: मुसलमान है ना
0: जी,
1: हम जिंदा नहीं है, हम ऑलरेडी मुर्दा है। उसने हमको जिंदा नहीं देखा, जो ट्रंप था
0: जी,
1: वो समझ गया ये भीख लेने वाले लोग हैं, $4 देकर इनको खरीद लेंगे। हमारा मुल्क, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुझे फख्र है मैं अपने मुल्क का
0: जी,
1: पर अफसोस है उनकी किरदार का, अफसोस है
0: जी,
1: फख्र है मैं पाकिस्तानी हूँ, पर मुझे अफसोस है जो हमारे लीडर है ना
0: जी,
1: हर साल जाते हैं एक ठूठा लेकर अमेरिका के पास, उनके पांव में बैठते हैं यार, कोई हद होती है। सो इसलिए उसने अटैक किया, क्योंकि हम जो बाकी मुसलमान है ना, हम मरे हुए हैं, अगर जिंदा होते ना तो उसको हमारा डर होता। देखो एक कौम जिंदा थी, कौन सी कौम? ईरान। उसने उसके साथ किया, वो जिंदा थे ना, इसलिए वो भाग आए ना अभी। वो बोल रहा है निगोशिएशन करना है, क्यों निगोशिएशन करना है? अगर तू इतना जोर वाला है, इतना तू तबाही कर रहा है कि तू क्यों निगोशिएशन ढूंढ रहा है? Why? It wasn't because they win him, it was Karishab because they were losing. But the truth is, we've lost the fight before it even started. Because hamare Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne hame farmaya tha ke hai musalmano meri baat gaur se sunna. Agar ek musalman duniya ke dusre kinare par ho na, usko takleef ho, aapke dil mein dard hona chahiye.
0: True, very true.
1: सब ईमान मजबूत होता है. अगर मेरे मुसलमान मेरे आंखों के सामने जलील हो रहे हैं, मार कटाई हो रही है यार, तो फिर मैं वो समझता हूँ मैं मुसलमान ही नहीं. अगर मैं अपने नबी का फरमान नहीं अमल कर सकता, मैं मुसलमान कैसे चला सकता
0: हूँ?
1: सच बात यह है, अगर नबी का फरमान जो नहीं चल सकता, जो नबी का फरमान पर पाबंद नहीं हो सकता, वो किसका पाबंद है? मैं आपको ये भी बता दूं, वो डोनाल्ड ट्रंप का पाबंद हो जाता है. आज ट्रंप आएगा, कल बुश था, परसों ओबामा था, ये सब चलते रहेंगे और इनके जो वडेरे हैं ना, ये बदलते रहेंगे. अफसोस की बात ये है कारी साहब, जंग किसी ने नहीं जीती, क्योंकि जिन माँ के बेटे शहीद हुए हैं ना, बेटियाँ, जिन बेटों की माँ शहीद हुई है, जिन बच्चियों के बाप शहीद हुए हैं इस जंग में, वो तो नहीं समझते कि हम जीत गए हैं जंग. उनका खानदान का खानदान ही तबाह हो गया है, तो वो कैसे कबूल करेंगे हम जीत गए हैं? यार सच बात यह है कारी साहब, हम हारे हुए हैं जंग शुरू होने से पहले. इनको ये मालूम था, अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है, नहीं जी हम नेगोशिएशन करेंगे, ये करेंगे. अगर पाकिस्तान बोलता कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या बदमाशी है, वेनेजुएला को आपने उतार लिया, हम नहीं बोले, वो तुम चाहो तुम्हारा काम जाए. हमारे मुसलमान भाई के घर में आप घुस गए, आपने इतनी लड़ाई की है, हमें कोई कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं होगी.
0: लेकिन अगर आप देखें जहांगीर साहब, आपके तो लीडर उधर जाकर चापलूसी करते हैं और उनको कहते हैं कि आप तो, आपको तो नोबेल प्राइज और पीस प्राइज देने चाहिए. हमारे मुल्क के तो ये प्राइम दे आर सेइंग दैट यू डिजर्व द पीस.
1: तारी साहब, जो बेटा होता है वो बाप को कभी भी गलत नहीं बोलता, वो बोलता है मेरा बाप सबसे अच्छा है, ये इन सब का बाप है. अमेरिका में सॉरी हूँ मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी हद हो गई है इज्जत करने की, हद हो गई है. ये इनका बाप है, ये उसके बेटे हैं. जैसे बाप बोलता है, मैं अपने, मेरा बाप जो हुक्म फरमाते थे ना, मैं उसी वक्त अमल कर लेता था, वो मेरा बाप था. दूसरा बोलता तो मैं नहीं अमल करता, मेरा बाप बोलता जो भी बोलता है मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरा बाप है. इसलिए कारी साहब, ये जो है ना लोग, ये वो इनका बाप है, तो ये अपनी अवाम को भी मरवा देते हैं, गरीबी में फंसा देते हैं. जंग हुई है कहाँ? ईरान में.
0: जी,
1: ईरान में जंग हुई
0: जी,
1: है
0: जी.
1: अब बर्तानिया कितने दूर है ईरान से?
0: जी,
1: यहाँ डबल रेट नहीं हुई पेट्रोल की, डबल नहीं हुई. तो पाकिस्तान का है रात देखो कितना हो गया है, एक लीटर का जो 200 रुपये था ना, पता नहीं मैंने उस दिन सुना था 600 रुपये लीटर हो गया है, तीन गुना ज्यादा, तीन गुना ज्यादा. यहाँ पे जो चार 10-5 ऊपर का दी है ना, वहाँ पे तीन गुना ज्यादा. वो हमारे मुसलमान मुल्क है ना, उनको तेल भी सस्ता मिलता है ईरान से, तो वो तीन गुना ज्यादा क्यों? वो बर्तानिया से बेहतर है उनका मुल्क, उन्होंने बेहतर चलाया हुआ है बर्तानिया से, वो तीन गुना ज्यादा कर रहे हैं, वो टैक्स ले रहे हैं, तो वो अपना मुल्क सुधर रहा है. नहीं, सबसे बदतर मुल्क हमारा मुल्क हो गया है, क्योंकि हमारे लीडर जो है ना ये पिके हुए हैं. जब तक हम खुद अपना आप को नहीं संभालेंगे, तब तक हम किसी के घर जाकर उनको धमकी नहीं दे सकते. सारी साहब,
0: वेरी गुड, वेरी
1: गुड. मेरा अपना घर ठीक नहीं है तो मैं दूसरे को नहीं बोल सकता तुम्हारा घर गलत चल रहा है.
0: सही.
1: या मेरे भाई को क्यों बोला? क्योंकि मेरा अपनी परेशानी बनी हुई है घर में, तो मैं दूसरे को कैसे बोलूंगा.
0: थैंक यू वेरी मच जहांगीर साहब.
1: बात है हमारे मुल्क
0: जी,
1: मैं
0: सॉरी हूँ. आपने बहुत अच्छी बातें कही और जितने भी हमारे सामीन हैं वो सब आपकी बातें सुन रहे थे और आई बिलीव मोस्ट ऑफ देम वो आपके साथ अग्री भी करते हैं. और इस तरह आया करिए जरूर. प्लीज डू कम ऑन अगेन एंड अगेन एंड गिव अस योर पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स इम्पोर्टेंट. आई वांट टू लिसन टू व्हाट पीपल हैव गॉट टू से एंड सो डू पीपल वांट टू लिसन टू यू बिकॉज द मोर पीपल कम इन एंड स्पीक अबाउट इश्यूज एंड टेक इट ऑफ द चेस्ट. एंड ये आपके लिए फॉरम है क्योंकि ये सब हमारा दीन है. दीन के अंदर सियासत है, दीन के अंदर आपस के अंदर भाईचारगी है. तो वंस अगेन भाई जहांगीर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. इट्स सो नाइस ऑफ यू. इंशाल्लाह
1: Qari Sahab, you're a highly esteemed Qari Sahab. I have full respect for you and the public. Please let them know I respect every single person above what I respect myself.
0: Thank you very
1: above
0: much.
1: Above myself. Very I respect everybody. And please forgive me if I've said any wrong words, but I feel so bitter and so hurt by my own leaders. You know, these leaders that are non-Muslims are doing a better job than my Muslim leaders. I'm sorry, but for me, they're doing a better job.
0: Jazakallah.
1: Than my own Muslim leaders.
0: Ji.
1: Thank you for your time.
0: You're most welcome. And keep coming on.
1: I really appreciate your time. I appreciate your programs. I listen to them, but I never come on. But this was such a sensual topic that you touched on. I felt that I must air my view. And I hope people have learned something from it. And if there's something I've said wrong, maybe they can educate me differently. I don't know.
0: But
1: yes, the ceasefire is on. The ceasefire is on with Lebanon until Israel stays sat down.
0: Gee.
1: The ceasefire is on. The day Israel throws the first rocket or tries to interfere with the war with the country, then Iran will cancel everything and it will be back to war again. Gee. And inshallah, my iman is with my Muslim brothers and sisters wherever they are in the world.
0: Jazakallah khair ji. Thank you. Nice words to finish off with. That was ye the hamare Jahangir bhai aur inhone apne khayalat ka izhar kiya. This was bhai Jahangir and he's given us his side of the story, opinion. If you have anything else to say or if you have something that you agree with, disagree with, if you want to air something, you're most welcome. Hamare studio ka number 01274 306666. Aur Jahangir bhai, thank you very much for coming along. It's so nice of you. आप कह रहे थे कि आप सुनते रहते हैं लेकिन कभी आते नहीं, तो प्लीज डू कम अलोंग एवरी फ्राइडे इवनिंग्स इंशाल्लाह. तो फिलहाल ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं. आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद. मैं आपका मेहबान हूँ मौलाना फजलदाद और ये है सनराइज रेडियो.
2: यू आर लिसनिंग टू आलिम ऑन एयर हजरत मौलाना फजलदाद. आलिम ऑन एयर ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन सनराइज रेडियो ब्रेडफोर्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग फ्रॉम 8 PM to 9 PM. दैट्स एवरी फ्राइडे इवनिंग 8 PM to 9 PM London time. If you are calling from overseas and want to take part in the program, remember the telephone number is +441 127 30 6666. That's +441 127 30 6666. That's every Friday evenings 8 PM to 9 PM London time. Sunrise Radio, Bradford. So, chalo ek baar fir, ye hai.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اور ایسے کرتے ہیں کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو کالز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات چلاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: You know,
3: where is the humanity, where's the insaniyat, where's the husn ikhlaq, the Muslims we should have? It doesn't exist. We're two-faced people.
0: Mm-hmm.
3: What Pakistan is doing, going around reconciling the America with Iran, why do they not reconcile the internal issues before they go out?
0: True, true. Very good question. What's your name, beta?
3: Masoud.
0: Masoud, ji. Masoud al-ji, go on. Carry on.
3: You know, we're two-faced people. You know, astaghfirullah, I'm sorry to say, but majority of us Muslims are we're two-faced.
0: Mm.
3: You know, astaghfirullah, please forgive me for saying this on the radio. It's a lesson to be taught. You know, the prejudice, we say these people are racist. They're not racist. We are racist amongst ourselves.
0: Mm-hmm.
3: You know, our racism starts from our own house. That son is black.
0: Mm-hmm.
3: You know, it's Sunni, it's Diobandi, it's Brelvi, is this, is that, you know, we create, you know, the friction that shouldn't be amongst us is amongst us. What we need to look at is this, the Kalma Shahada and the Quran. That is it.
0: True.
3: You know, and the Kalma Shahada and the Quran teaches us what? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anybody that reads that Kalma is a Muslim.
0: True.
3: Whatever his actions are, that's beside the point. He's going to be judged according to his action on the day of the Yom Al-Qiyamah.
0: Mm-hmm.
3: You know, why are we judging them?
0: Gee,
3: you know,
0: true.
3: Why did we have all Iran is here? Mm-hmm. He's the only Muslim country that stood against the non-believers, mm-hmm. or those that were causing the genocide.
0: Mm-hmm.
3: That is the only country that stood. No Muslim country even mentioned the word.
0: Mm-hmm.
3: Russia did. Mm-hmm. China did. Japan did. And you know, what is their NATO? It's one voice, one world order, more mm-hmm. or less. Mm-hmm. Which what we had in the time of Khalafa.
0: Mm-hmm.
3: Why can we not implement the time of Khalafa at this present moment in time?
0: But if you notice, Baba, you're right, 100%, I agree with what you're saying. Why is it that none of these countries are saying something or not standing against the aggression? Because every one of them is saying this is aggression, that this sovereign country has been invaded by Israel and by the United States. And there's all these other countries, and they know that if it's not today, tomorrow it might be us. A lot of people are saying this. They're saying that yesterday it was Iraq, then it was Afghanistan, and then it was Libya, and then it was Gaza, and then it was, and you know, and now people are saying that after Iran it could be Pakistan. People are saying this, and they're saying that we've heard it from reports of these some Israeli leaders, etc. So why is it that nobody's taking a stance and saying this is enough is enough? What is the reason? What do you think?
3: Do you really want to know? If you read into Jeffrey Epstein file, you'll find out that the most Arabs, the rest of them are all in that Jeffrey Epstein file. They are scared
0: mm-hmm.
3: that if they speak up, they'll be revealed.
0: Mm.
3: That is the true fact.
0: So do you think that a lot of time this war is trying to distract people away from the Epstein files and these sort of things? That's what you feel?
3: No. The truth, the reason the Muslim countries have not spoken up, because they are in part of the Jeffrey Epstein file.
0: Mm-hmm.
3: That's
0: okay.
3: One of the reasons.
0: Mm-hmm.
3: The second is to the reason Israel is playing this card, and so with America, is because they're diverting the attention of the European media, so the Jeffrey Epstein file does not get revealed.
0: Mm-hmm.
3: That's the second.
0: Thank you, Masoud Bhai. Very interesting. Sorry.
3: And the other one is, you know, it's all to do with the masonry stuff. You mm-hmm. know, the masonry stuff. It's all part of that. You know, the Russian child.
0: Mm-hmm.
3: You know, the countries that don't have that bank system, they're all getting done.
0: Mm-hmm.
3: They're all getting invaded. Venezuela, it didn't have that bank of theirs. So what did they do? They took him out. And, you know, they're going to carry on doing that till the you know, the like Imran Khan mentioned once, that we need to have the Eastern Bloc.
0: Mm-hmm.
3: And if that happens, then maybe there is a possibility they'll be saved. Other than that, the reason Afghanistan's gone in war with Pakistan is because India had been to Israel. Israel has turned around and funded India to go into Afghanistan to cause a problem with Pakistan, so that the American can get base in Afghanistan.
0: Okay. I'm just going to brief it, because I'm just looking at the time. But it's very interesting hearing what you're saying, and it seems that you've got a bit of understanding of different countries and the politics behind it. So you're most welcome. Do come along sometime. We've only got about a few minutes left, and that's why I'm going to round it off by Masoud. Very interesting, and that's your point of view, inshallah. So do keep coming along.
3: If possible, just highlight that please make dua for the Muslim Ummah.
0: Absolutely. Gee, that's very...
3: And to become one.
0: That's very important.
3: Because they become one, we will go into the time of Khalifa time, or one world, or the Khalifa time. We'll be following the time of Khalifa, one voice, one world order.
0: Take inshallah.
3: The Muslim Ummah will follow that. So long as that dua has been made, inshallah, we will unite. But it's just a matter of time. And the Muslim needs to understand that the only what Iran is doing is standing up for its rights.
0: It's defending itself, yes.
3: It's defending itself. And the oil strategy, that was the only way to highlight what has happened, was wrong. That's why, if you notice, all the European unions are gone against Israel and America. Mm. Otherwise, they would have followed that route and they would have, you know, funded it and carried on doing it.
0: Take inshallah.
3: Because Iran has stopped the oil and the whole world felt the package.
0: Okay, thank you, Bhai Masood. I'm just going
3: thank
0: to... That was Bhai Masood, and he came on and he gave his opinions. Unki apni rai hai. If you agree with him, disagree with him, you're most welcome to come on air and give us your opinions as well. I'm just very, very conscious of time. I do have one or two more people. I'm going to be very, very brief, if the next caller can be very brief, inshallah. Agar aap mukhtasar kar sakte hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی آپ
4: مولانا صاحب بات ٹھیک آ رہی ہے
0: آواز آ رہی ہے جی
4: اور میں نے کہا تھا یہ پاکستان جو سازشی کرا رہا ہے صلح کروا رہا ہے پاکستان اپنے ملک میں تو جو حالات اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں
0: جی
4: جو اپنے ملک میں وہ جو ملک اپنے ملک کے حالات نہیں ٹھیک کر سکتا اس میں آپ کو پتا چند دن پہلے علماء شیعہ سے جب ملاقات ہوئی تھی چیف فیلڈ مارشل کی تو اس نے کہا تھا آپ کو اتنا پیارا ایران لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے آپ ایران چلے جائیں اب آپ خود کیوں گیا ایران اس میں بھی کچھ دال میں کالا ہے یہ دیکھو جب وہ ہڈی ڈالتے ہیں نا یہ اس ہڈی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنے ملک کے غریب بوڑھے لوگوں کو نجائز بند کیا ہوا اپنے ملک کے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن کے ایران میں گیا ہے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو ہے نہیں یہ 22 اسکیل کا ایک آفیسر ہے اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ بننا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ادھر وزیر اعظم جاتا ہے یا پریزیڈنٹ جاتا ہے یا کوئی اور وزیر جاتا ہے ایران میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ یہ کیا لینے گیا یہ تو ایک سرکاری ملازم ہے اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا تو یہ اس کو ان کو پتا ہے یہ جیسے ہم کہیں گے ویسے بھی یہ کام کرے پاکستان کے پاس کون سی اتنی اتھارٹی ہے جب صلاح ہو جائے گی اگر امریکہ کو پھر دوبارہ مداخلت کرے گا تو پاکستان اس کا کوئی جواب دے سکے گا
0: تھینک یو ویری مچ
4: سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
0: اپنے
4: اوکے جی آپ ٹائم بہت کم ہے ان شاء اللہ نیکسٹ فرائیڈے پھر ان شاء اللہ
0: نیکسٹ فرائیڈے بول رہا تھینک یو آپ سمجھ گئے میری بات جی کہ مختصر ٹائم ہے ابھی ایک منٹ آئی تھنک ٹو منٹس باقی ہیں اور مجھے راؤنڈ آف بھی کرنا ہے تو اٹس سو نائس آف یو بھائی مسعود صاحب یو کیم اینڈ یو گیو یور اوپینین ویری نائس آف یو ٹو کم الانگ بھائی جہانگیر صاحب آپ بھی آئے تھے علی ارائن صاحب آپ بھی آئے تھے اینڈ آل دا ریسٹ آف دا کالرز اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ ساری لائٹس فلاشنگ ہو رہی ہیں بٹ آئی ایم سوری اف آئی کڈنٹ ٹیک یور کالز آپ کی جو کالز ہیں میں نہیں لے سکا تو بہت معذرت لیکن نیکسٹ فرائیڈے یو موسٹ ویلکم اس موضوع کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی موضوع اور علی ارائن صاحب نے آخر میں ایک بات بہت اہم کہی کہ بھائی ہمارے اپنے ملک کے جو حالات ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک طرف تو ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو یہ پسند نہیں ہے وہیں چلے جاؤ اور پھر خود ادھر چلے جائے تو اس میں تضاد ہے چلو یہ ان کی تو ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے یو موسٹ ویلکم ٹو گیو یور اوپینینس لیکن آخر میں ٹو راؤنڈ اٹ آف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی دعا کرو کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس تمام ظلم کو تو ختم فرما جتنے بھی مظلومین ہیں یا اللہ سب کی تو مدد فرما ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ ایران میں ہو چاہے بنگلہ دیش میں ہو چاہے فلسطین میں ہو ایشیا میں ہو یورپ میں ہو کیونکہ یورپ میں بھی لوگ ان پر ظلم ہو رہا ہے چاہے افریقہ میں دنیا کے جس خطے کے اندر بھی ہیں ویئر ایور پیپل آر having oppression done upon them دعا کرو اللہ رب العزت سب کو ظلم سے انجسٹ سے سب کی نجات نصیب فرماوے اللہ رب العزت ظالمین کو صحیح سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں اسی کے ساتھ مختصر دعا ہے یا اللہ تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما اور سب سے بڑی بات تیری رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین I'm your host Maulana Fazildad and this is our session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time آپ خود بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے آج بھی بہت سارے ساتھیوں نے حصہ لیا تھا. میں آپ کا محسبان ہوں مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو اور ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. عالم آن ایئر is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
6: Panah mangta hu Allah ki shaitan mardood.

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। वैदिक साहित्य से इस जगत की रचना के विषय में जो हम पिछले सप्ते विवरण दे रहे थे, उसी को आज हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने कहा था, श्रीमद् भागवतम में ये प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक परम सत्य भगवान पर एकाग्र मन से ध्यान लगा रहे थे और इस तपस्या के फलस्वरूप वो उस ज्ञान को अर्जित कर सके जिसके द्वारा उसे स्वयं भगवान अपने अंदर दिख रहे थे, जिन्हें वो पूर्व में बहुत प्रयास करने पर भी देख न सके थे। तो 100 वर्षों तक ध्यान लगाने के बाद वे सभी कारणों के परम कारण को समझ सके। फिर उन्होंने प्रामाणिक ब्रह्म संहिता की रचना की, जिनमें वे गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद जो आदि पुरुष है उसे मैं भजता हूं। तो भगवान को हम तब जान सकते हैं और तब उनकी सेवा में लग सकते हैं जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। अर्थात उनको समझना या उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना, ये सब उनकी कृपा से ही होता है। तो जैसे हमने कहा था, ब्रह्मांड के अंदर जो आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर से भरा हुआ है, उस सागर के ऊपर ब्रह्मा जी ने उस समय देखा एक विशाल सफेद कमल के फूल जैसा शैया, जो कि वास्तव में शेषनाग स्वयं थे, और उस शेषनाग पर भगवान स्वयं अकेले लेटे थे। शेषनाग के अनेकों शीश थे और प्रत्येक शीश पर एक मणि सुशोभित था। इन सब मणि रत्नों से निकलता हुआ प्रकाश या तेज उस स्थान के घने अंधकार को दूर कर रहा था। फिर भगवान ने अपने चरण कमलों को दिखाया उन्हें ऊपर उठाते हुए। ये चरण कमल सभी वरदानों का स्रोत है, जिन्हें भौतिक दूषण से मुक्त भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे वरदान उनके लिए है जो कि उन्हें शुद्ध प्रेम और भक्ति के द्वारा पूजते हैं। उनके चंद्र जैसे पांव और उंगलियों के नाखून की दिव्य किरणों की शोभा एक कमल के फूल के पंखरियों के समान दिख रही थी। कदंब पुष्प के केसर धूल के समान एक पीतांबरी वस्त्र भगवान के कमर पर था और उस पर एक खूब सुशोभित कमरपट्टा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में एक बहुमूल्य हार, भगवान का दिव्य स्वरूप कीमती रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित था। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान को निहारते हुए निर्णय किया कि यही भगवान हरि है। भगवान के वक्षस्थल पर फूलों की माला वैदिक विवेक के मधुर गीत से उनके गुणों को गा रही थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सुदर्शन चक्र के सुरक्षा के कारण सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उस भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहे। सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव एनर्जी के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान को कई प्रार्थनाएं अर्पण की और भगवान ने उन्हें उत्तर दिया। कई वर्षों की घोर तपस्या से पवित्र होने के बाद ही ब्रह्मा देख सके भगवान विष्णु के हजारों मुख, पांव, सिर, आंखें, कान इत्यादि। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि जिस कमल के फूल पर वो स्थित थे वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, और वे विचार करने लगे कि किस प्रकार अनेकों लोकों को वो निर्मित करेंगे जो इसी कमल के फूल में पहले के समय में समा गए थे। ब्रह्मांड में जितने भी लोक है उन सभी के बीज उस कमल में थे जिस पर ब्रह्मा स्थित थे। अर्थात जितने लोक है उन सभी को भगवान ने पहले से ही निर्मित कर दिया था, और जितने जीव प्राणी है वे भी ब्रह्मा में जन्मे थे। तो सारा ये भौतिक जगत और जितने उनमें जीवित प्राणी है उन सभी को पहले से ही भगवान ने रच दिया था पौधों के रूप में, और ब्रह्मा को उन सभी पौधों को सारे विश्व में बिखारना था। इस ब्रह्मांड में जितने लोक या प्लैनेट्स है वे सब 14 भुवन में विभाजित है। ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स विद इन दिस यूनिवर्स आर डिवाइडेड इंटू 14 spheres। जो भुवन नीचे है इस ब्रह्मांड में उसे पाताल लोक कहते हैं,
जो मध्य में स्थित है उसे भूरलोक कहते हैं, और जो भुवन ऊपर स्थित है उसे स्वरलोक कहते हैं, और उनसे भी ऊपर महरलोक है, तपोलोक है, फिर सत्यलोक है और फिर ब्रह्मलोक है, जिनका प्रलय के जल से विध्वंस नहीं होता। तो जो वास्तविक सृष्टि है उसे सर्ग कहते हैं, और बाद में जो भी कुछ ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा की जीवन की आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष। इस अवधि के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है वही महाप्रलय का समय है, और उस समय सभी जीव भगवान विष्णु के स्वरूप में समाते हैं, और फिर दूसरी सृष्टि जब फिर से रची जाती है तब यही सभी जीवात्मा जो विष्णु के स्वरूप में समाविष्ट पड़े थे वे फिर से अपने पिछले कर्म और इच्छा अनुसार इस नव निर्मित सृष्टि में प्रकट होते हैं। सृष्टि की रचना के विभिन्न विभाग मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद 10वें अध्याय में बतलाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ब्रह्मा की रचना को। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इन नियुक्तियों की रचना की। स्वयं को धोखा देना, मृत्यु का आभास, निराशा के कारण क्रोध, उत्तराधिकारी होने का झूठा अभिमान, शरीर होने का भ्रम, अपने वास्तविक पहचान की भूल, इससे पहले के अनेक प्राणियों के विभिन्न शरीरों को रचे या अलग अलग योनि को रचे, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उन अवस्थाओं को रचा जिनमें इन प्राणियों को इस भौतिक जगत में रहना होगा। जब तक एक प्राणी अपनी वास्तविक पहचान को भूल न जाए उसके लिए इस भौतिक जगत की अवस्थाओं के भीतर रहना असंभव हो जाता है। इसी कारण इस भौतिक जगत में रहने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाए, वो कौन है वही भूल जाए, वो ये भूल जाए कि ये एक आत्मा है और ऐसा सोचने लगे कि वो ये शरीर है। इस भौतिक जगत में रहने का यही सबसे पहला कंडीशन है। ऐसी भटका देने वाली सृष्टि को एक पाप में कार्य मानकर ब्रह्मा को इस कार्य से प्रसन्नता नहीं हुई, इसी कारण उन्होंने भगवान पर ध्यान करते हुए अपने आप को फिर से पवित्र किया और आगे सृष्टि का निर्माण करने लगे। तब ब्रह्मा ने सर्वप्रथम चार संतों को रचा, सनक, सनंदा, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने संसारिक या भौतिक कार्यों को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्हें प्रकट करने के बाद ब्रह्मा ने उन चार पुत्रों को कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, अब तुम प्रजा बढ़ाओ। भगवान श्री वासुदेव के प्रति आसक्त होने के कारण उन्होंने मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाया था, इसी कारण उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। जिन्होंने मोक्ष या मुक्ति का मार्ग अपनाया हो वे भला बंधन को क्यों स्वीकार करेंगे। जब इन चार कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया तो ब्रह्मा ने अपने क्रोध को अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, फिर भी वो क्रोध फूटकर ब्रह्मा के भौहें यानी आईब्राउज के मध्य में से एक बालक के रूप में तुरंत प्रकट हुआ जिसका सौंदर्य लाल और नीले रंग के मिश्रण का था। क्योंकि ये बालक जन्म से ही रोने लगा कि हे भाग्य विधाता, हे जगत के गुरु, कृपया मेरे लिए नाम और स्थान नियुक्त कीजिए। कमल के फूल से जन्मे शक्तिशाली ब्रह्मा ने कोमल वचनों से उस बालक को सांत्वना दी और उनकी आग्रह स्वीकार करते हुए उनसे कहा, तुम रो मत, मैं अवश्य ही वैसा करूंगा जैसे तुम्हारी इच्छा है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हें सब लोग रुद्र के नाम से पुकारेंगे क्योंकि तुमने चिंताग्रस्त होकर रोदन किया है। हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए रहने के स्थान नियुक्त कर लिए हैं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम इन स्थानों पर रह सकते हो, हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, हवा, आग, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तपस्या में। ब्रह्मा ने उनसे कहा, मेरे प्रिय रुद्र, तुम्हारे 11 और नाम भी होंगे, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव
और धृतव्रता। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी होंगी जो सब रुद्राणी कहलाएगी और उनके नाम इस प्रकार से होंगे, धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। मेरे प्रिय बालक, अब तुम इन सभी नामों को, स्थानों को तथा अपनी पत्नियों को स्वीकार करो, और क्योंकि तुम सभी प्राणियों के स्वामियों में से एक हो, तुम अब अधिक संख्या में आबादी बढ़ा सकते हो। शक्तिशाली रुद्र ने फिर कई संतानें उत्पन्न की जो कि उन्हीं की तरह रूप में, बल में और क्रोध जैसे स्वभाव में थे। इस प्रकार रुद्र के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किए गए और उनके जो पुत्र हुए, उनकी संख्या अनगिनत थी। और जब वे सब साथ में एकत्र हुए तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो सारे ब्रह्मांड को निगल जाएंगे। जब इन सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा ने ऐसी अवस्था देखी तो वो भयभीत हो गए। उन्होंने रुद्र से कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी आंखों में से जो आग की लिपटे निकल रही है, उसके द्वारा सभी दिशाओं में वो सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं और मुझ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। प्रिय पुत्र, अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप को तपस्या में स्थित कर दो, जो कि सभी प्राणियों के लिए शुभ होगा और तुम्हारे लिए भी आशीर्वादजनक होगा। तपस्या से ही तुम इस ब्रह्मांड को फिर उसी प्रकार से निर्मित कर सकते हो जैसे पहले था। केवल तपस्या के द्वारा ही एक व्यक्ति भगवान की ओर जा सकता है, जो सभी प्राणियों के हृदय में बसे हुए हैं और साथ ही साथ इंद्रियों के पहुंच से भी दूर है। जब ब्रह्मा के द्वारा रुद्र को ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पिता की परिक्रमा की और उनके वचनों को शिरोधार करते हुए वन में प्रवेश कर दिए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा ने उसे प्रलय के समय ही वापस आने के लिए कहा था, जिस समय उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ब्रह्मा ने इस जगत में आबादी बढ़ाने के लिए 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। शरीर का सर्वश्रेष्ठ भाग विचार माना गया है और नारद का जन्म ब्रह्मा के दिव्य विचारों से हुआ था, वशिष्ठ का जन्म उनके श्वास से, दक्ष का जन्म उनके अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से और क्रतु उनके हाथ से। पुलत्स्य का जन्म उनके कानों से हुआ था, अंगिरा उनके मुख से, अत्रि उनकी आंखों से, मरीचि उनके मन से और पुलह ब्रह्मा की नाभि से, और कर्दमा का जन्म ब्रह्मा की छाया से। ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास प्रजा उत्पन्न करने के लिए केवल एक या दो तरीके नहीं है, जिस प्रकार आज इस आधुनिक समय में हमारे पास है। फिर ब्रह्मा ने विपरीत वस्तुओं की भी उत्पत्ति की। धर्म को प्रकट किया गया ब्रह्मा के वक्षस्थल से, जिसमें भगवान श्री नारायण निवास करते हैं, और अधर्म ब्रह्मा के पीठ से प्रकट हुआ, जहां जीवित प्राणियों के लिए घोर मृत्यु होती है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और पीठ सबसे तिरस्कृत भाग। जब किसी शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो हम अपने छाती को सुरक्षा प्रदान करते हैं और आक्रमण का बोझ पीठ से सहन करते हैं। धर्म और अधर्म किसे कहते हैं वो भी यहां समझाया है। जो भी कुछ भगवान की प्रेम में सेवा की ओर न ले जाए उसे अधर्म कहते हैं, और जो भगवान की प्रेम में सेवा की ओर ले जाते हैं उसे धर्म कहते हैं। काम या इच्छा ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुई, क्रोध भौहे यानी आईब्राउज के मध्य से, लोभ उनके होठों के मध्य से और बोलने की शक्ति उनके मुख से, सागर उनकी जननेन्द्रियां से तथा नीच और अधम कार्य उनके गुदा या मल द्वार से, जो कि सभी पापों के स्रोत है। तो सब उत्पन्न हुए ब्रह्मा के शरीर या मन से।
फिर ब्रह्मा के चार मुख से चार वेदों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सभी प्रकार के ज्ञान समाविष्ट है। ये चार है ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इनके बाद स्तोत्र स्तवन, जिनका उच्चारण पहले कभी नहीं किया गया था, पूजन की क्रियाएं, उच्चारण के विषय और एक एक करके दिव्य कार्यों की भी स्थापना की गई। ब्रह्मा ने फिर सभी वेदों से आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत की कला और स्थापत्यम अर्थात आर्किटेक्चरल साइंस, ये सब वेद में से उत्पन्न किया। उनके सामने वाले मुख से आरंभ करते हुए वेद में शुद्ध ज्ञान है और मनुष्य समाज के लिए जिस किसी भी ज्ञान की आवश्यकता है वो इसमें है। केवल इस लोक में नहीं, इस पृथ्वी लोक पर नहीं, परंतु अन्य और लोकों में भी। ये समझा गया है कि युद्ध की कला भी एक आवश्यक ज्ञान है सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, और उसी प्रकार संगीत की कला भी। ये सब ज्ञान के विभाग को कहते हैं उपपुराण, अर्थात वेद के सहयोग देने वाला ज्ञान। अंग्रेजी में जो कहेंगे तो इसे कहेंगे सप्लीमेंट्स ऑफ द वेदस। वेद का मुख्य विषय है आध्यात्मिक ज्ञान, परंतु मनुष्यों के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के सहयोग के लिए ये दूसरा ज्ञान उपपुराणों का वेद का आवश्यक भाग बन जाता है। और फिर कहा गया है इतिहास पुराणानि पंचमं वेदं ईश्वरं सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। इन उपपुराणों के बाद उन्होंने पंचम वेद को रचा, जिसे पुराण और इतिहास कहते हैं, और इनकी रचना उनके मुखों से हुई, क्योंकि वो सब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकते थे। इतिहास होते हैं कुछ विशेष देशों के या इस जगत के, परंतु पुराणों में सारे ब्रह्मांड का इतिहास मिलता है, और वो भी केवल एक कल्प का नहीं, कई कल्पों का। ब्रह्मा को उन सभी ऐतिहासिक सत्य का ज्ञान है, और इसी कारण ये सभी पुराण इतिहास है, कोई मानसिक कल्पना नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के द्वारा रचित ये वेद के भाग है और इसे पंचम वेद कहते हैं। तो जो पुराण और इतिहास है वो पंचम वेद, वो पांचवा वेद है। जितने विभिन्न प्रकार के यज्ञ अग्नि से किए जाते हैं, जैसे षोडशी, उक्ठ, पुरीशी, अग्निष्टमा, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय और गोसवा, ये सब ब्रह्मा के पूर्वीय मुख से प्रकट हुए। फिर विद्या, दानम, तपह, सत्यम, धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम असृजत सह वृत्तिभिः, के विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पद माने गए हैं, और इसे सीखने के लिए चार आश्रमों की तथा चार वर्णों की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था भी ब्रह्मा के द्वारा रची गई थी। अर्थात विद्या को ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी, दान देने वाले गृहस्थ, तपस्या अपनाने वाले वानप्रस्थ और सत्य का प्रचार करने वाले सन्यासी, यही धर्म के चार पद है जिन्हें चार आश्रम कहते हैं। और फिर कर्तव्यों के अनुसार भी चार विभाजन है, और फिर कर्तव्यों के अनुसार भी विभाजन है। बुद्धिमान विभाजन को ब्राह्मण कहते हैं, राज्य संचालन के विभाग को क्षत्रिय कहते हैं, व्यापार और उपजाऊ विभाजन को वैश्य कहते हैं, तथा मजदूर विभाजन को शूद्र कहते हैं। इन चार वर्ण और आश्रमों को नियोजित रूप से ब्रह्मा ने रचा था ताकि आत्म साक्षात्कार में वृद्धि हो सके। विद्यार्थी का जीवन, ब्रह्मचारी का जीवन उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करने के लिए है, पारिवारिक जीवन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, परंतु उसमें दान को मध्य रखते हुए करने का मार्गदर्शन है। और फिर पारिवारिक जीवन से छुटकारा प्राप्त करना तपस्या के लिए है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए है, और अंत में संन्यास जीवन परम सत्य के प्रचार के लिए है, आम जनता को प्रचार करने के लिए।
जब एक समाज के ये सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग होता है। पशु वृत्तियों से मनुष्यों को शुद्ध बनाने के लिए ये वर्णाश्रम की शिक्षा है, और इनमें भी सबसे उत्तम दर्जे की शुद्धता स्वयं भगवान के ज्ञान से आती है, जो कि शुद्ध से भी विशुद्ध है। फिर ब्रह्मा के मुखों से प्रकट हुए न्यायपूर्वक तर्क का विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानूनी व्यवस्था, नीति सूत्र, भू भुवः और स्वः, ये सब ध्वनि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई और प्रणव ओंकार ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुआ। इन सब की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कितना अद्भुत है कि अपने आप को मैंने सारे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार से बिखारा है, फिर भी जनसंख्या इतनी कम है, इतने शक्तिशाली संत पुरुषों को उत्पन्न किया है, फिर भी आबादी बहुत ही कम है। इस दुर्भाग्य का विधि के लेख के सिवाय और कोई कारण हो नहीं सकता। जब इस विचार में वे डूबे हुए थे और अलौकिक शक्ति को निहार रहे थे और दो रूप उनके शरीर से प्रकट हुए, इन दोनों को अभी भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में जाना जाता है। ये दोनों शरीर ब्रह्मा के शरीर से ही निकले, एक के पास मूछे थी और दूसरे के छाती पर सूजे हुए दो स्तन। आज तक इनके प्राकट्य के स्रोत को कोई समझा ना सका, इसी कारण इसे ब्रह्मा का कायम कहते हैं, ब्रह्मा की ही काया, और ब्रह्मा के पुत्री या पुत्र होने का कोई संकेत भी नहीं है। ये दो नए भिन्न शरीर शारीरिक संबंध में जुड़ गए। उनमें से जो पुरुष का रूप था उसे मनु माना गया और उसका नाम था स्वयंभूव, और उस स्त्री का नाम था शतरूपा, जो कि ये महात्मा मनु की रानी थी। फिर इन दोनों ने शारीरिक संबंध से जनसंख्या बढ़ाई। मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा में 5 बच्चों को उत्पन्न किया, 2 पुत्र जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तनपाद, और 3 कन्याएं आकुटी,

समझाया गया था, यह प्राकृतिक जगत भगवान की अनेकों शक्तियों में से एक है और तीन पुरुष अवतार या विष्णु स्वरूपों में से हमने अभी तक दो विष्णुओं के विषय में चर्चा की, एक कारण जल में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले महाविष्णु जिसको कारणोदकसाई विष्णु कहते हैं, और दूसरा विष्णु विस्तार गर्भोदकसाई विष्णु जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड के गर्भोदक सागर पर निवास करते हैं और उसी के कमल नाभि में से ये कमल का फूल उगता है जिस पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं और फिर सृष्टि की रचना करते हैं। अब तीसरा विष्णु विस्तार शिरोदकसाई विष्णु के नाम से विख्यात है जो कि सात्विक गुण के अवतार है, भगवान के विराट रूप है और सभी प्राणियों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो सब कुछ में प्रवेश करते हैं, एटम यानी परमाणु में भी। यही इस ब्रह्मांड के पालनहार है। इस ब्रह्मांड के उत्तरीय दिशा के ऊपर सत्यलोक से भी ऊपर उनका अपना लोक है जिसे कहते हैं श्वेत द्वीप। वे अनंत शेष नाग की सैया पर शीर सागर में विश्राम करते हैं, दूध के सागर में, और इसी शिरोदकसाई विष्णु के माध्यम से अनेकों अवतारों का विस्तार होता है। हमें यह भी याद रखना है कि इस ब्रह्मांड के बाहरी इलाके में एक छिलका जैसा है, जैसे एक नारंगी के बाहरी विभाग में एक छिलका होता है, जैसे एक अंडे के बाहरी भाग में छिलका होता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के बाहरी भाग में एक कवरिंग है, एक छिलका है, एक आवरण है। इस जगत को ब्रह्मांड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आकार, इनका रूप एक अंडे की तरह है, ब्रह्म अंडा। परंतु इस ब्रह्मांड का बाहरी छिलका एक मुर्गी के अंडे की तरह नहीं है। ब्रह्मांड का आवरण धातुओं से निर्मित है, पृथ्वी, जल, आग, हवा और खम, और ये एक एक आवरण पहले आवरण से 10 गुना अधिक मोटा है। सबसे पहला आवरण इस ब्रह्मांड में धरती का है, पृथ्वी का, पृथ्वी धातु का, और वो इस ब्रह्मांड से 10 गुना अधिक मोटा है। यदि ये ब्रह्मांड 4 बिलियन मील है आकार में, तो धरती का आवरण 40 बिलियन होगा, और फिर जल या पानी का आवरण धरती के आवरण से 10 गुना अधिक होगा, फिर आग का आवरण पानी के आवरण से 10 गुना अधिक रहेगा। तो यदि आप इस प्रकार से गिनते जाए तो इन धातुओं से आवृत ये ब्रह्मांड आवरण के मिलान में तो एक परमाणु या एटम की तरह होगा। और कितने ऐसे ब्रह्मांड है वो तो जानना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो इस एक ब्रह्मांड के आवरण का अनुमान लगा सके। अभी तक जो श्रोतागण इस सृष्टि के विवरण को सुनते आए हैं उन्हें तो अनुमान हो चुका होगा कि वैदिक साहित्य में केवल सृष्टि यानी इस जगत का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके विषय में जो विस्तार मिलता है वो विस्तार और आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने बड़े पैमाने पर यह विस्तार कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य की बुद्धि और उनकी सोच अत्यंत सीमित है और उनके अनुभव तो उनसे भी सीमित है। ऐसे सृष्टि के निर्माण का ज्ञान तो वही दे सकते हैं जो सृष्टि के समय पर उपस्थित थे और जिसे सृष्टि के समय की बात आज तक याद हो, और ऐसा व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता भगवान के सिवाय। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि भगवान श्री व्यास देव ने जो ये लिखा है वही इसका प्रमाण है कि वो स्वयं भगवान के अवतार है। इस जगत की रचना विस्तार पूर्वक किस प्रकार से हुई ये हम सब मनुष्यों के समझ से बाहर की बात थी, परंतु भगवान ने अनन्य कृपा करके हमारी जानकारी के लिए और हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जो हम कभी नहीं जान सकते थे वैसी जानकारी हमको दे रहे हैं। इसी कारण उनके प्रति हम जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। आज के इस विषय पर जो हमारे किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न हो या उनके पास कोई टिप्पणी हो तो हमारे पास वे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल

एड्रेस है vedavanibrisbane@gmail.com. याद रहे वेदवानी vedavanibrisbane brisbane@gmail.com. आप सभी को हमारा साथ देने के लिए हार्दिक धन्यवाद. हरे कृष्णा. और अब आपकी सेवा में कुछ भजन कीर्तन.

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
1: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

आप सब सुनने वाले को फिरोज खान का नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम और सासिकार अभी से लेकर ठीक 12:30 बजे तक एक बार फिर आपका दिल चाह कार्यक्रम संगीत की जानकार को हम पेश करेंगे स्टेशन पर। इंतजार करने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक ये ट्रूली फिरोज खान आपका साथ हो जाते हैं अपने स्टूडियो मेंशिल से। You know what? Today is 26th of July. That means we got another 5 days to go before we see the last of July year 2026. And 1st of August is a very, very special day. तो चलो शुरुआत करते हैं संगीत के जानकार जिसके अंतर्गत आप जैसे जानते हैं अगर आप हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आपको बता दें कि अपने प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं हिट्स ऑफ 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, संगीत की जानकार को सुनने को जी चाहता है, शायद फिरोज खान को सुनने को जी चाहता है। रिमेम्बर, लेट्स टॉक मोर म्यूजिक, ये बातों की जानकार नहीं लेकिन संगीत की जानकार। आपका स्वागत करते हैं 40, 50, 60 से निकाली हुई चुने हुए संगीत। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वी प्ले हियर आर 60 टू 70 टू 80 इयर्स ओल्ड। तो चलो साथ देते हैं अभी से लेकर 12:30 बजे तक। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान और ये है 1701 ब्रिस्बेन। शुरुआत करें हैं साल 1952, मीना कुमारी, भारत भूषण, फिल्म बौजी बारा। जी हाँ, 1952 फिल्म बौजी बारा, नौशाद संगीतकार गीतकार शाकिल वैद्य यूनी लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी।